आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: अरे दी कहते ना सॉन्ग तरायन
1: अरे उड़ हो अरे उड़ हो कर... अरे उड़ हो कर्मन की गति न्यारी अरे